0: फेंक देने हैं। ये जंगल है, इस जंगल किला कटे सबे साधु सबे पंडित सबे जोगी फराड़ी ने, ध्यानत जुर्म ए ध्यानत जुर्म ए ख्यालां दे जन्म सारे सवालां विच बदल गए ने। ये जंगल है, ये जंगल है, ते इस जंगल ये जंगल है, ते जंगल विच कोई कानून नहीं होंदा।
1: शाह जी बहुत ही बिजी हो, फिर भी तुसी टाइम कढ़िया साडे वास्ते, बहुत बहुत ग्रेटफुल धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच
0: जी। जी शुक्रिया, शुक्रिया।
1: अपनी पार्टी ते खुदा हाफिज, मेरे वालों गुड विशेस थो। सो ए सन जी इटली तो शाह जी होनी तो बिजी सन, फिर भी उन्होंने साडे वास्ते टाइम कढ़िया थोड़ा जा। ते अपना आराधना जी मैं थोड़े वाल आ रहा, ते तुसी ये सुन रहे हो रेडियो तो बंद कर दो ते आ।

यमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

0: अपडेट्स के लिए
1: तो मैं उम्मीद
0: करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
1: बबी जी सुन रहे हो मेनू?

0: हेलो जी
1: बबी जी, मेरी आवाज बस तो भाई ड्रामा ही होने लिया कोई। मैं ना एक गाना ला लेना ते जिनी देर इन्हों ना आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर।
0: हेलो जी
1: बबी हेलो जी हे हे कितने हाल हो बबी जी सुन रहे हो मैनू बबी जी ताड़ी आवाज जी है ना वो मुकेश पागलूंगा दोस्तों साडा ना कॉन्टैक्ट नहीं।

सो दोस्तो, मैं गलबात कर रहा सी कि उस वक्त जेड़े लोका ने दावा किया सी कि धरती चपटी नहीं गोल है, उस वक्त दे जमाने ने उन्हां नूं सजाए मौत दित्ती। ते भारत दे विज्ञानियां दी गल सुन लो, असी टेकनीक ते पश्चिम दी है ना नकल मार के जे कुछ बना भी लईए, धार्मिकता दे पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं गल कर रहा, जदों मंगलयान जदों भारतीय विज्ञानियां ने बनाया ते आपे बना के बना लिया, फिर नारियल भन के धूफा जगा के उदी पूजा करन लै पे, हद हो गई की तुही जड़ी मशीनरी बनाई है, कोई देवता बनाता है, तो हाँ कोई रब बनाता है जिदी पूजा करन लै हो, हाथी तो तुही ये सारा कुछ बनाया है, भावें टेकनीक किसे होर कंट्री दी सी कोई गल नहीं, पर तुही चलो बनाया है ते इहदे च पूजन वाली इहदे नक कसाउण वाली केड़ी गल है। रफेल जहाज जदों लै गए, राजनाथ सिंह हुणां ने उहदे टायरां थले नींबू रखे, नारियल तोड़े, हां जी उहदी आरती उतारी, उह जहाजां दी पूजा कीती। जेड़े इंजीनियरां ने ये जहाज बनाए होणगे उह तुहाडे बारे की सोच रहे होणगे, कि तुहानूं कुछ होर भी याद है, चेते आउंदा कोई कोई पूजन तो सवा, चूहिया तक पूजन तो सवा, हर वो चीज जिदी समझ ना आए उहदे अगे मत्था ही टेकी चले जाना, नदी अगे मत्था टेक देना, दरख्त तले अगे मत्था टेक देना, फलानी चीज नूं इट्टां दा ढेर जिथे लगा होएगा उथे जा मत्था टेक देना, ये अंधविश्वास है, धार्मिकता नहीं। जहाजा की पूजा की गई जी, नींबू नूबू धर के ए जहाज की गल है, ताडे पूजा करने पेट्रोल घट खाणगे या तुसी इहदे ते कोई फायर करोगे तो बंदे ज्यादा मारनगे, या इन्हां नूं कोई गोली टच नहीं करेगी दुश्मन दी, की केड़े पॉइंट ऑफ व्यू दे उत्तों तुसी मतलब की उन्हां दी ये पूजा कर रहे हैगे सी। मैं अपनी धार्मिक मैंटेलिटी की गल कर रहा भारतीयां दी, जहाजा दे नहीं कोई इतराज, मैं सोच की गल कर रहा भाई असी सोचते किदा। प्यारे भारतीयो, पिछले 2000 साल तो तुहानू धर्म का कोई फायदा होया? हां जी, हो सकता धर्म फायदेमंद ही होवे, पर तुहानू फायदा नहीं कोई होया, नुकसान ही होया इहदा। सारी दुनिया का मार्टिन लूथर वर्गे जड़े हैं पूरा जोर ला के उन्होंने प्रचार किया कि धर्म एक मकड़ जाल है, ते अंधविश्वास उहदे तों भी वड्डा मकड़ जाल है। आओ, देश का विकास अरदासां करके नहीं, पखंड करके नहीं, दीवे जगा जगा धूफा जगा जगा देश का विकास नहीं होना, धूफ का आरतियां का अरदासां का विकास नाल कोई संबंध नहीं। तुसी एवें अपने मन की शांति वास्ते सोच है तुहाडी कि यह अरदासां नाल हो जाएगा, नहीं, हत्थी करके होना है, कोशिश करके होना है। आओ, देश का विकास अरदासां करके नहीं, खुद मेहनत करके करिए, रब को मंगण दी थां चीजां खुद पैदा करिए। अहे बाबा टल पक्की पकाई कल, मंगण दी थां आओ खुद पैदा करिए, स्वर्ग नरक नूं मारो गोली, अपना मुल्क ही स्वर्ग बनाइए। दोस्तो, ए बिल्कुल सच है, असी अपना मुल्क स्वर्ग बनाउणा है के नरक बनाउणा है, ए देश दे नागरिकां ते सरकारां दे हाथ विच हुंदा है।
ਤੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਐਂਡ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਕੌਆ ਕੱਟ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੌਏ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਕਦੀ?

दोस्तों तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज, मैं हां ताडा दोस्त होस दर्शन सिंह खख, प्रवास रेडियो न्यूयॉर्क तो ताडे नाल इस वेले प्रोग्राम दे उपर रूबरू हो रहे हैं जी। आओ नाल मिलके इस प्रोग्राम की शुरुआत कीती है। ते अज सुरेंद्र शिंदा होना दे कुछ गीत, उस तो बाद खबरां, ते उस तो बाद डॉक्टर गुरदीप सिंह संधु आओ मिलते हैं जी। जो दोस्तों आओ जेड़े भी दोस्त प्रवास रेडियो ग्रुप नाल जुड़े है, ते जे उन्होंने रेडियो डाउनलोड किया ते सुनो, जे नहीं किया ते कर लो, बहुत वधिया प्रोग्राम हुंदे। थैंक यू सो मच, सुनते रहो जी।

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल की आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 and 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट दे दोस्त दर्शन सिंह खक दे नाल रोजाना सुनो प्रोग्राम दिल दी आवाज परवाज रेडियो दे उते
1: दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज मैं हाँ ताड़ा दोस्त हो दर्शन सिंह खक प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट जर्मनी सो अज दे प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम है जी अज विसाखी का दिहाड़ा है सारे ही सत्कारयोग जिन्ने भी वीर भैन भरा साडे प्रोग्रामा नाल जुड़दे ने जां बाद च भी सुनदे ने उन्हां सारयां नूं विसाखी दियां बहुत बहुत मुबारक क्योंकि साडे विसाखी कल नूं होनी है जी अज शाम होगी 7 पूरे बज गए 7 o'clock शाम दे एयर टाइम हो गया अपना 7 बजे दा ते तुहाडे जेड़ा मन में 4:30 हो गए हुण सुबह दे तो विसाखी दा दिहाड़ा जी अज इंडिया दे विच मनाया जा रहा ते असी जेड़ा हैगा वो कल नूं फिर मनावांगे कल नूं गुरुद्वारा साहब जावांगे मत्था टेकांगे ते ए प्रोग्राम कल दा ते दोस्तों विसाखी के दिहाड़े ते फिर मेरे वालों मेरी सारी टीम वालों बहुत बहुत बधाईयां जी तो आपा अज प्रोग्राम तुहानू पता कि जदों भी असी साडे गुरुआं दा कोई प्रोग्राम आउंदे है जन्मदिन आउंदा जां कोई भी प्रोग्राम हुंदे शहीदी दिहाड़ा हुंदा असी उहनां दे उपर प्रोग्राम जरूरी करदे हां बहुत चिर तों इही साडी इक कम चल रहा है क्योंकि रेडियो दा फर्ज ए नहीं हुंदा कल्ला तुसी खबरां ही करी जाओ जां ओह भी करी जाओ सारे काम तुहानू करने पैंदे है क्योंकि ए भी साडे एक प्रोग्राम जेड़े जरूरी हुंदे आ तां कि साडी सुनण वालिआं तक जेड़ी ए चीजां जेड़ियां ओह भी याद रखियां जा सकन सो बड़ा धन्नवाद सारे वीर भैण भरावां दा ते कुछ गीत सुणांगे कुछ शब्द भी सुणांगे ते उस तों बाद फिर आपां लाल सिंह चीमा होणी आउणगे ओह भी अज विसाखी ते ही कोई गल्लबात करनगे नाले खबरां भी करनगे हो सकदा जी डाक्टर साहब भी अज विसाखी ते ही गल करन ते आपां हमेशा करदे आं लो आपां सुणदे आं जी कुछ विसाखी दे।

दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज मैं हाँ ताड़ा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खाक प्रवास रेडियो फ्रैंकफुर्ट जर्मनी सो फ्रैंकफुर्ट जर्मनी दे रेडियो और न्यूयॉर्क तो ताड़े नाल रूबरू हो रहे हैं जी ते आज दे प्रोग्राम दी आपां शुरुआत करन जा रहे हैं ताड़े नाल सो तुहानू पता कि एक दिन छड़ के ते दूसरे दिन असी प्रोग्राम करदे हां जिहदे विच कुछ गीत फिर असी कुछ अमेरिका दियां दुनिया दियां खबरां लैके ताड़े नाल रूबरू हुंदे हां ते उस तो बाद डॉक्टर गुरदीप सिंह संधु सेहत संबंधी जानकारियां भरपूर जानकारियां एक लड़ीवार कथा दी तरह ओह दिंदे हैं जिहदे विच बहुत स्रोते उन्हां नूं सुणदे हैं क्योंकि तीन प्रोग्राम करदे हैं जी दिहाड़ी च बहुत वड्डी मेहनत कर रहे हैं कोई मफाद नहीं है हिंदी च भी करदे इंग्लिश च भी करदे अपने नाल इत्थे पंजाबी विच करदे हैं सो टाइम मिले ते ओह प्रोग्राम भी सुन लिया करो उन्हां दियां वीडियो ते फेसबुक भी दे फेसबुक ते लाइव भी हुंदे आ सो खबरां भी ऐसी कोशिश करी दियां कि तुहाडे तक म्यारी खबरां लैके आईए ते कुछ गीत भी चोण में कोशिश करी दे आ कि कोई वधिया गीत कल्चर गीत जिहड़े जिहदे विच वैगलर ना होवे जिहदे विच इहो जिहा शब्द वाली ना होवे ओह असी कोशिश करी दी आ तुहाडे तक पहुंचाउण दी सो लो प्रोग्राम दी शुरुआत करदे आ जी कृपा होगी तेरी मालका ए बाबा गुलाब सिंह जी उन्हां दा पहला पता नहीं गीत कहोगे शब्द कहोगे कुछ भी समझ लियो जी ओही ताड़े नाल रूबरू करदे आ